विचारे गावंधु नो जति सत्य संतोखी गावंधु नो वीर करारे गावंधु नो पंद परंद रखी सुर जुग जुग वेद नाले गावंधु नो मोहनिया मन मोहन स्वर्ग मच पियाले गावंधु नो रतनु पाए तेरे अठ सत्य रतना।

गुजरी महल चौथा हर के जन सतगुर सतपुर का बिनो करो कृपास हम खीरे खिरम सतगुर सरनाई कर दया नाम प्रकाश मेरे मीत गुरुदेव मोको राम नाम प्रकाश गुरमत नाम मेरा प्रण सकाई हर कीरत हमरी रह रास रहा हर जन के वन बाग वतेरे जिन हर हर सरद हर प्यास हर हर नाम मिले त्रिपथा से मिल संगत गुण प्रकाश जिन हर हर हर रास नाम न पाया थे भगहीन जम्पास जो सतगुर सरन संगत नहीं आए त्रिक जीव त्रिक जीवास जिन हर चन सतगुर संगत पाए दिन दूर मस्तक लिखिया लिखास धन धन सत संगत चित हर रस पाया मिल जन नानक नाम प्रकाश

सेवक सिख सब कर तारा मोर चान च कर दे करिया सब बैरन को अज संगरिया पूर्ण होए हमारी आशा थोर बचन की रहे प्यासा तुम्हें चा कोई अवर न त्याऊ जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सीख हमारे तरिया चन चन सत्र हमारे मरिया आप हाथ ते मुझे उंबरिया मलन का त्रासन वरिया हु जो सदा हमारे पच्चा सिरिया सतुज जू करियो रचा राख ले ओ मोय राख नहारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंधु शन के हंता तुम हो पूरी चतुर तस्कंता का पाए ब्रह्मा पपतारा का पाए शिव चू अवतारा का पाए कर प्रकाश सकल का किया तमाशा जवन का

जवन का सब जगत बनायो, देवते चचन उपजायो, आद अंत एके अवतार, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिसही को हमारे, सकल प्रजाचन आप सवारी, शिव कुल को शिव कुल सकतीयो, सतरन को बल मोपद कियो, कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पचानत, चित्ती ते कुंचर असतुल्ला, संभर कृपा दृष्ट कर फुल्ला, संतन दुख पाए थे दुखी, सुख पाए सतन के सुखी, एक एक की पीर पचाने, कट कट के फट फट की जाने, जब उद करत

पापहन अनमानित महामूर्ख च भेद न जानित महादेव को कहत सदा शिव निरंका का चीनत नहब आप आपने बुद्ध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तोय तेती तुमरा लखा न जाए पसारा खेबद सच पतन संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक पयो रव कही पुप्पा अंत चेर जसे तज कीनी उत पुच कहन बहु रच दीनी कहूं फल रज हावे बेटा कहूं सिमत पयो संक इकेटा सगरी श्रेष्ठ काय अचंब आद जुगा स्वरूप सियंब आवराचा मेरी तुम करो सिक उबार असिक संगरो दुष्ट जिते उत्वत उत्पाता सकल मलेच खरो रनकाता जय अस तुज थव सरनि परे तिनके दुष्ट तुकत हवे मरे पुरक चवन पग परे तिहारे तिनके तुम संग सब तारे जो कल को एक बार तिया ताके कल निकत न एह राजा होए तय सब काला दुष्ट अरिष्ट तरे तत्काला कृपा दृष्टन चाय निहार हो ताके थापत न कमोहर हो रिद सिद्ध

दुष्ट तो कते ले हो पचाए, कृपा करी हम पक जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सबराता, खिल बिक सकल देखो हरता, दुष्ट दो कियन को चे करता, श्री असुचु चप पाए दियाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बंश फल पावे सोई, दुख न तिसे भी आपत कोई,

चौपाई संबत सस्र सहस बनिच अर्थ सस्व निथिन कहिच भवद्रव सिद्धि यति अष्टमी रविवार थेर सत्रव ग्रंथ सुधारा।

अंतुर कुर रातना जेवद जप कुर नाओ नेत्री सतकुर पेकना श्रवनि सुनन कुर नाओ सतकुर सेती रतिया दरगे पाया ताओ काओ नानक पाकरे जिसनो ए वतते जग में उतर